0: ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದು. ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ ಬಿಕೆ ಸುಮತಿ.
1: और उल्टी भाई गंगा हमको हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था.
2: जी जी जी.
1: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. तो फिर कहा यार गुलाम नहीं, गैंगस्टर. अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए. जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई. उल्टा पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने. यहाँ उल्टी भाई सब भाई गंगा ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी. और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
2: जी.
1: और उससे उसकी वजह से फिर सेकंड भी आई और फिर थर्ड भी आई.
2: जी. तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
1: कुछ ऐसा ख्याल मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी. कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था सेकेंड और थर्ड भी. तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं. पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकंड वाले में इरफान था. तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ.
2: जी जी.
1: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया. तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस और ये वो, थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में.
2: जी. एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में.

0: ये साहा बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज़ में और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मज़ा कैमरे के पीछे ज़्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग मैं करता हूँ क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया इसी तरह से और वो लोगों को पसंद आ गया तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते हैं तो मैं रोल कर लेता हूँ। बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कम्प्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही मान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करें तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, तो माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा तो... बताई भैया दोनों एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बता दे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई क्योंकि इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी,
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल रिवर और साथ में वो चंबल के घाटियां और रवीन्स जो है। तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार हैं, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मैं इरफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: कि तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस नहीं तो पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे यही आसपास, खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गाँव में और पूरी तैयारी के साथ, और बहुत कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स कर रहे हैं नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए।
0: तो
1: वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंग है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते हैं, ये भी बात।
1: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
0: जी,
1: और लगना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
1: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूँ। देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है,
0: जी कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी जिसे जावेद साहब से पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ, तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है, लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है तो ये है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
0: जी बिल्कुल, तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
1: लिखना तो एक्चुअली सबसे बड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होके गुजरता है, बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं, तो मैं मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं, मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉपी है मेरी,
0: ये आप कह रहे हैं ना,
1: नहीं, सच बात है, उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
0: जी,
1: बड़े से बड़े की, बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया वो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग, उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने, बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा, तो अगर 15 पिक्चरें हैं तो 4 ही पिक्चरें होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
0: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
1: सुनते हैं? मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूं।
0: जी
1: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ, कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी हैं, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
0: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
1: मैंने अभी ख्वाजा अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन,
0: जी जी,
1: जिसके गाने
0: बहुत ही खूबसूरत
1: गाने।

0: यार फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते हैं ना सब स्टूडेंट्स का अपना
1: जी, जी.
0: तो उन फेस्टिवल में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका.
1: क्या बात है भाई. तो
0: जी मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया. मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है. मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ.
1: क्या बात है.
0: वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का. और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ. बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो पसू करते रहते हैं गोवा में. बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने. वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में करवाते वो.
1: जी जी.
0: अब ये था मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें. तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे.
1: जी जी जी. तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए, शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का.
1: जी जी.
0: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग.
1: जी जी. तो वही गाना सुनते हैं.
0: ये मेरे दिल में आज का

0: साहिर साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज़ और
1: दाग,
0: दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो इतने सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी तो, मेरा नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है। तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आए हैं मशाद अली से
0: जी।
1: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत मिलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं। और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाघर, तब तो पैदल चलना है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धूले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
0: जी,
1: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
0: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं
1: जी। जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
1: मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ, इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता
0: जी। जी,
1: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
0: बिल्कुल,
1: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है
0: जी। जी,
1: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वो कई कारणों से करते हैं, ये वो लिरिक्स बहुत पसंद आती हैं। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे वो सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
0: क्या बात कही आपने, सच में
1: जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज़ लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कंपोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री
0: जी। बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर पाते,
1: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, सिर्फ बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख लेना, से इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर
0: जी। बिल्कुल,
1: तो पुराने राइटर से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी है, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
0: जो सबके समझ में,
1: देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है, है ना
0: जी।
1: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता
0: जी जी। तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे? और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से, हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
1: देखिए, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
0: जी,
1: बुरा काम ही होता है ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
0: जी,
1: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है, कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो, वही इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
0: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
1: ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में अब गाने खत्म हो गए
0: जी,
1: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
0: जी।
1: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाने आप रख नहीं सकते कि, तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, एक अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
0: जी।
1: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक, तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ
0: जी जी।
1: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर का सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे
0: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते
1: हैं। और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर पर, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा, आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है, फिर उन्होंने बड़ी रमेश सिप्पी शोले ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना
0: जी बिल्कुल,
1: छोटी फिल्म है देख लीजिए आप।
0: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
1: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर मैं लोगों को कभी इस बात का वादा कर लो, वो ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना
0: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
1: जी,
0: ये वाला गाना आपको आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: किए, और एक नाम है जानसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो होते हैं
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी जी,
1: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना सुना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी
0: क्या बात है,
1: और भी तुलका लेकर रुको, जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्चुअली बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है, तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो
1: अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा ये सब जैसे भी कब करते हैं वो करते रहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर हैं, परदेश में हैं, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज़्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ ख़ास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जो पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं।
1: हाँ, उसमें कैरेक्टर का बहुत था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका एक कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
0: तो जी बताइए बिल्कुल।
1: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, फिर ये क्या भाई, जैसे क्या याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
0: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा
1: जी,
0: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
1: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
0: इंस्पायर हुए।
1: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
0: तो समाज के सामने वो सच्चाइयां लाना?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने, समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
0: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
1: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
0: जी बिल्कुल,
1: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त रखे
0: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे।
1: हाँ, बाकी इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जी, जी जी जी।
0: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
1: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया। मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मैं एक बड़ा वो बैंड शायद भी होगा था, एक शो था तांडव जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत चीजें दिखाई, उसके बैंड उसमें सैफ था। मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले में तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बतौर लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था। तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
0: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और बताइए आपको पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज़्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: आप वो दिल तो है दिल,
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का, ये बड़ा यूनिक सॉन्ग है
0: जी,
1: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
0: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: आपने कई बार
1: लता जी गा रही, मैं गा सुन ला।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: तिग्मांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं, 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज़्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। वो तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी लेकिन हमने मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के जो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सब ने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी, तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे होते थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने छोटे छोटे जब होते तब बहुत बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो
1: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
0: दुलारे बेटे थे,
1: दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछे जाओ।
0: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
1: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
0: तकलीफों से नहीं गुजरे,
1: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ, मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
0: जी।
1: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहाँ, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, शेखर कपूर का नाम सब जानते
0: थे
1: क्योंकि वो डिग्जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता था उनके असिस्टेंट, ठीक है।
0: जी।
1: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
0: जी जी
1: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है सब, नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
0: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
1: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब NSD में मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था।
0: जी जी,
1: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल करके जिंदगी खत्म हो जाती।
0: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती, तो और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है।

0: जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
1: ये पार्ट टू का गाना है, इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़ा हुआ, उसने कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
0: जी, सुनते हैं ये गाना।
2: छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है,

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसी कोई बहुत लीक से हट के नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ। कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक, मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीज़ें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द ईयर्स, एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात, मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिलके, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
1: जी जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता
0: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं,
1: ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं, आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया।
0: जी।
1: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपनी जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है, या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वहीं नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहाँ देखा, वहाँ पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें, हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
0: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाएं?
1: जी सुनाइए, धाएं धाएं
0: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद बारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई दिया।
0: अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नज़रिए से कि एक अच्छी फिल्म दें दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग से लगता है फिक्शन बहुत तो
0: जी।
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे
0: जी
1: पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक
0: जी,
1: हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी

0: शुरू कर दूं।
1: जी जी, और अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
0: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पैगाम दूँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिल के इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 ईयर्स पूरे हुए हैं
1: जी,
0: उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें ज़िंदगी में।
1: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये डेढ़ घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।